एस आदि फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा

ए माया को ठुलो बाजार मा नबेच्नु दिल हजार मा पवित्र माया तिमीलाई नराख्नु दिल मा अरुलाई।

0: Cthulhu.
1: मित्र जी
0: वीर सिंह के गीत आई
1: गीत गाउँदा गाउँदै वीर सिंह भाइ
0: दाजु भाइ मेरी

0: पहले हम लोग चार बजे का
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दर हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।